0: मार मैं पाचो
1: इटी विनो और रेडियो
2: लाइफ एंड नो जोक मैन नो यू नो व्हाट इट इज बिट्स बॉय ऑन दिस वन.

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो
2: मिस्टर मारे शुभंग अटोशन पोडरी अमेडोरी को तो कहने मानी नीचे गिरलिंग विंग तू मरो लोग दोनों युगन वकान पेटियां यंग वा निये इन बिविंग ये तीर कनु रिको तेरे अंकितो ओके
3: Ajoni wilo wani umega wano bedinge
2: Omega wilo wani umega wano beditam Wodo danyi lobo tiko wai weng Wodo kati lobo nero wai weng Omega tuwa yae kweni ana yae zahira Tuwa yae kweni ana yae zahira An misa balaba wia rajata makaki
3: Eni bala nuu chilimi yote penyo chilim niloni
2: Ini yae kweni anadano me yugana niti chipe
1: Y yo me quiero ver cuaro.
0: Mar me pacho.
1: Y ti uño o radio.